0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: Kajaria Tiles, your world-class luxury. Yeah.

0: PRBT 01600 33 2 5 PRBT 6054 00 17 UTL 77 32 56 05
1: शब्द संगीत स्वर माधव केसी अरेंजर यमन खनाल उत्पादक तथा वितरक छुपा देउराली म्यूजिक प्राली काठमांडू प्रबंधक यमन खनाल संपर्क 9849

मास्क क्लॉन्टर ब्रांड का एयर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आयरन को खरीदमा एक्साइटिंग ऑफर पाउनु होस् हरेक 15 दिनमा क्लॉन्टर को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जित्ने मौका पनि नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।